0: 祈求啦，祈祷平安。这当村因迄个所在呢，迄、那个保护的保护网拢已经破碎掉了。后面的呢，风水等等啦，稍微风轻轻一吹，那雨少少的下。可能呢，都没有个保护墙去维护它，所以虽然看到刚刚的那样画面，更要担心的是后面的长期不知道如何保护，所以现在很无奈无力的时候呢，要呼吁大家。尽一点心啦，而且要虔诚，为天下祈求平安。我们都一起呼吁，一起呢祈求。
1: A few days ago, I have visited to that place also, nearby that place also, and I could not imagine, like if I have been to that situation. How my family, my loved one would have feel. Oh, I would pray to the God so everyone would recover, would have everyone. I pray to your God that everyone who have been there return safely to their home.
2: 那关心之外呢，大家也心里很忐忑，也不安哈、哦。那实际在后方呢，我们也启动了所有。我们的志工目前我们在这边做就是储备我们的赈灾物资，还有跟政府密切的联络。
3: 我们在Lumbini में भए पनि हामी आफ्नै लोकलिटी में अलिकता हामी एउटा समाज बढाई अलिकता डोनेशन उठाएर उहाँहरुको सहकार्यमा पनि गर्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई यहाँ थाहा भएको छ र त्यसै क्रममा मैले यो पनि भन्न चाहन्छु कि मिल्छ भने हामीले एउटा एक आपसमा एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड गरौँ जम्मा गर्न सकिएला र उहाँहरूलाई अझ बढी सहयोग पुग्ला भन्ने आशले एउटाले गर्दा थोरै जान्छ सबैले गरे नि त्यो अलिअलि गरेर
0: सही कान एन्ना अनि तकेदान ये कै गन ताजा फुनसान ये छिदाइ हो मसी आइ ये छिन रवा छुइ只要大家表示一点的心意，这都是呢帮助了这个力量。所以呢，小小微薄的合起来，力量就大啊！力量再大也无法度去帮助个偌济啦。不过呢，一点点的微微的那样的虔诚合起来。就有力量啦，所以，敢那要求大家人一份的虔诚。请国会校长也是要呼吁我们的老师与学生们哦，可以给他们这一段哦。让学校看了哈，那期待大家动员起来，不是讲自己偌济，那样动员起来的虔诚的心，才是真的力量哈。所以尽量呼吁学生的家长，或者是呢老师等等呢，都是呢，只要我们认识的，都赶快。发一道 mail， 恁的手机啊，大家人呐，会当安尼啦，尽咱的一份的心力吼，这也是一个的力量哦吼。啊，这就是讲，大家人爱向天叫，唔敢啦。孔夫子呢，讲行罪于天，无所道呀。孔子敢是真有智慧呢？孔子呢，那不是迷信教，但是他呢，尽道理啦，虔诚的信愿， 所以自己心静心呐，人未当无啦。所以讲吼，各家人何用？期待我就现在讲呢。那全球慈济人现在有在线上，都要听进去啊！呼吁大家人尽一份心啦、啊，来祈求天下平安啦、啊！这都是我们慈济人呐、啊，应该要尽的一份爱心哈、啊，力量啊！感恩各位菩萨。